0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहा। हुण तुसी सरवण कर रहे सी श्री दरबार साहब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण। असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ले चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र जिथों कुछ ही पलों के इंतजार तो बाद सुनोगे हिंदी दे विच समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि यह घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी

0: बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित छठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

राम सखा निषादराज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषादराज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषादराज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषादराज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषादराज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

प्रोग्राम किसान वाणी सुन सकोगे रात 7 बजे। अज दे इस प्रोग्राम दे विच डॉक्टर अमरीक सिंह द्वारा गलबात की जाएगी कमाद तो वध पैदावार, इस तो इलावा मौसम का हाल भी जानोगे। रात 7:40 ते इंग्लिश टॉक सुनोगे, जिस विच कंचन मेहता द्वारा जनरेशन गैप विषय ते गलबात की जाएगी। रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है खेड संसार, इस प्रोग्राम नू सुन सकोगे रात 9:03 ते। शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम सुरसाधना सुन सकोगे रात 10:02 ते। आज दे इस प्रोग्राम दे विच कलाकार उस्ताद राशिद खान द्वारा राग मारू बिहाग च शास्त्रीय गायन सुन सकोगे। रात 11:03 ते साडे स्टूडियो तो सुनोगे प्रोग्राम सरगम। इस तो इलावा समाचार ते मुख समाचार अपने अपने निर्धारित समय ते पेश कीते जाणगे। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण तो कुछ पलों बाद ले चलांगे अपने दिल्ली केंद्र, जिथों सुनोगे संस्कृत च समाचार।

0: तेनैव तेन न्यायपालिकायां निरन्तरपरिष्कारस्य अधिकपारदर्शकतायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यक्षन्यायप्रदानं न्यायव्यवस्थायाः स्तम्भरूपेण पारदर्शिता जनविश्वासश्च इति विषयमाधृत्य आयोजिते षष्ठे रामजेठमलानी स्मृतिव्याख्याने मुख्यभाषणं कुर्वन् मुख्यन्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वतनियमो भवेत्। समुद्रसुरक्षां प्रति संशयमुत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीयसैन्यदलेन आख्यातं यत् तैलपोतः सुरक्षासीमाम् अतिक्रम्य जलसुरंगेन विस्फुटः। परम् अमेरिकादेशस्य मध्यकमाण्डविभागेन अस्य खण्डनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन् इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसम्बर मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वामोदी। नेपाले आप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिण भारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। सरकार ने कहा है कि फौज के अंतक यत्ना सदका जम्मू कश्मीर दे विच सुरक्षा स्थिति पूरी तरह काबू हेठ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नवी दिल्ली दे विच वियतनाम दे विदेश मंत्री नाल 19वीं भारत वियतनाम संयुक्त कमीशन की मीटिंग की सह प्रधानगी की। सरकार ने नेपाल बिजली अथॉरिटी नूं इस साल 31 दिसंबर तक 18 घंटे रोजाना बिजली बरामद करने की इजाजत दे दी है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान तो दरामद किए गए 362 मैट्रिक टन तो वध छुआरे जब्त किए ने। पंजाब भर में चलाई गई एक व्यापक इनफोर्समेंट मुहिम तहत आबकारी कर विभाग ने GST नियमों की उलंघना के शक में 170 वाहनों को जब्त कर लिया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अगस्त महीने के 6 वख-वख मामलों के 7 सरकारी मुलाजमान और 1 प्राइवेट व्यक्ति को रिश्वत लेंदिया रंगे हथी काबू किया है। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने 16 मार्च 2022 तो 11 सितंबर 2026 तक के 4 सालों तो वध समय दौरान 92 दहशतगर्दी मैड्यूलों का पर्दाफाश करके 686 दहशतगर्दा गिरफ्तार किया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने फिरोजपुर विच फिरोज शाह विखे नवीनीकरण किए एंग्लो सिख युद्ध अजायब घर का उद्घाटन किया। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब दे विच 27 अक्टूबर तो 5 नवंबर तक होने वाली हाकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 का लोगो जारी किया। सो ए सन न्यूज़ हेडलाइंस। मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से सी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है तुहाडा अपना पसंदीदा प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਠੀਕ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ 8 ਵਜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਅਤੇ ਠੀਕ 8:30 ਵਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा ₹2000 तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप होंगे। बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
3: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्री और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है।

0: दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 8 अरब 66 करोड़ डॉलर से घटकर वर्ष 2025-26 में 7 अरब 95 करोड़ डॉलर रह गया, जो 8.22 समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चे शामिल हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
4: इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर मस्ट डील विद इट।
0: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व

0: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को

0: win on CM turf, writes the Indian Express. And finally, the Indian Express writes about a village in Jammu adopted by army. The paper writes, adopted by army after killings, Jammu village sees change as it fights tragedy. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India, Justice Suryakant, says mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां, सरकार ने कहा कि 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान ते बैंक कोई चार्ज नहीं ला सकते। प्रतिष्ठित वर्ल्ड सर्कुलर इकोनमी फोरम 2026 सम्मेलन आज तो गांधीनगर च शुरू हो रहा है। भारत ते कनेडा विचकार तजवीजशुदा व्यापक व्यापार समझौते ते गलबात दा अगला गेड़ नवीं दिल्ली च शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जजां विरुद्ध शिकायतां दे निपटारे लई सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्टां वल्लों विकसित प्रणाली नूं मजबूत ते कारगर दस्सिया है। ते भारत ते अफगानिस्तान विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज दिल्ली विच खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल, सरकार ने कहा कि बैंक यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई या रूपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड राहें किए गए 2000 रुपए तक के लैण देण या भुगतान ते चार्ज नहीं लगा सकते। एक सरकारी गजट नोटिफिकेशन अनुसार कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली मुहैया करने वाला इन तरीकों राहें लैण देण करने वाले व्यक्तियों ते सीधे या सीधे चार्ज नहीं ला सकता। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लैण देण ते चार्जां संबंधी नियमों नूं स्पष्ट करन लई भुगतान अते सैटलमेंट सिस्टम एक्ट तहत इन्हां बदलावों नूं नोटिफाई कीता है। खास तौर ते यूपीआई ते रूपे समर्थ डेबिट कार्डां राहीं कीते गए 2000 रुपए तक दे लैण देण जां इलैक्ट्रॉनिक भुगतान विधियां वजों श्रेणीबद्ध कीता गया है। पिछले महीने सरकार ने स्पष्ट कीता सी कि खपतकारां तों यूपीआई भुगतान लई चार्ज नहीं लए जाणगे। भविख विच लागू होण वाली कोई भी व्यापारी छोटदार MDR निर्धारित सीमा तो वध दे चोणवें लैण देण तक ही सीमित रहेगी। ये चार्ज डेबिट या क्रैडिट कार्ड लैण देण ते लागू MDR नालों काफ़ी घट होएंगे। प्रतिष्ठित वर्ल्ड सर्कुलर इकोनमी फोरम 2026 अज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर च शुरू होएगी। दक्षणी एशिया विच पहली बार आयोजित हो रही ए कानफ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय वातावरण जंगलात ते जलवायु तब्दीली बारे मंत्री भुपिंदर यादव ते गुजरात के मुख्यमंत्री भुपिंदर पटेल सांझे तौर ते करनगे। इस समागम विच 65 तो वध देशां दे 2000 तो वध हिस्सेदार शामिल होणगे। इस समागम सर्कुलर इकोनमी लोकां ते खुशहाली लई तब्दीली विषय ते आयोजित कीता जा रहा है। दो दिना समारोह दौरान 4 मुख सैशन ते 16 विशा आधारित सैशन होणगे, जिन्हां विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की वरतों, साफ सुथरी ऊर्जा, टिकाऊ वित्त शासन ते स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्गे अहम खेत्र शामिल होणगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 19ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਸੀਅਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੇੜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਦਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ $50 ਅਰਬ

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
0: यानी कि झांजरा दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
0: यानी कि बुधवार दी झांजरा दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
1: जी।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: दर्शकों खबरदार, ये ब्रेकिंग न्यूज बाण तो बचना है, तो पैसे भेजते समय नाम अते रकम हमेशा दोबारा चेक करो।
4: RBI कहंदा है किसे नु भी पेमेंट करदे समय थोड़ा ध्यान नाल।
5: ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੋਸਟ

हेलो हेलो। लो जी, मैनूं लगदा कि आवाज़ जिहड़ी है ना उहनां दी साडे तक नहीं पहुँच पा रही। खैर, जिन्नी देर तक साडे अगले दोस्त आउंदे ने उन्नी देर तक आपां इंजॉय करदे हाँ जी। अगला गीत लता मंगेशकर दी आवाज़ दे विच गाया होया, इंजॉय करो जी इस गीत नूं।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ते लो जी दोस्तों, एक होर दोस्त पहुंच चुके ने जी साडे कोल। स्वागत है जी बहुत बहुत। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो जी?
2: धर्मा सागर
1: जी, की हाल चाल ने जी?
2: बहुत
1: वादिया प्रोग्राम इंजॉय
2: करो
1: जी। इंजॉय और सारा दिन करो लो जी। चंदा का ढूंढने चांद तारे निकल पड़े, गीत सुनते हैं जी, बहुत ही खूबसूरत।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ। साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: ते लो जी एक होर दोस्त पहुंचने जी। हेलो फरमाइश।
2: बड़ी
1: दूरों बोल रहे हो फिर
2: चलो
1: चंगी गल है ना जो पुराने देर बाद इज्जत मान भी पूरा होंगे है ना
2: नाराज
1: नहीं होना गीत सुना।

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਠੀਕ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपए डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट

0: MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की बैठक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू हो गई है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातो रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण ने पेंशन दायरे का विस्तार करने के लिए पेंशन सखियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में पेंशन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। वे भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साडे स्रोते आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते ने, नाल दे नाल न्यूज ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी अपने पूरे समय ते 11:05 लैके हाजिर तुहाडे सारयां दी अपनी दीपाली वधवा वल्लों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार, रदाब ते सत श्री अकाल। होर सुनाओ की ने हाल चाल। फिर प्रोग्राम दा करांगे आगाज, व्हाट्सएप नंबर साडा नोट कर लो 94655 36077।

9465536077 इस नंबर ते तुसी साढ़े तक अपने पंजाबी गीतां दी फरमाइशां भेज सकदे हो अपने नाम पते दे नाल। लो फिर बिना किसी देरी तो तुहाडा मनोरंजन करन लई असी बिल्कुल तैयार हाँ। प्रोग्राम दा पहला गीत तुहाडे नज़र करांगी जस मानक दी आवाज़।

प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है। तुहाडी फरमाइशां दा सिलसिला करन जा रही हां जी शुरू। सब तो पहला जिहड़ा साडे कोल सुनेहा पहुंच गया है पिंड

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

आकाशवाणी जलंधर तो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है तमक जलंधर पैंदी और तमक जलंधर पैंदी तुहाडे सुने हे हुम हुमा के साढ़े कोल पहुंचे हुए ने धमका पा रहे हो तुसी ते धमका असी भी पा रहे हैं असी भी पिछे नहीं हट रहे और प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी पूरे जोश उमंग दे नाल तुहाडे रेडियो सैट ते पहुंच रहा है। अगला सुनेहा फतेहाबाद हरियाणा तो पुरानी तहसील चौंक तो इंदरपाल बिट्टू स्टैंप मेकर चंचलपुरी आंचलपुरी गगनपुरी प्रिंसपुरी ते जीवन सिंह बुक सारा ही बुक परिवार। अगले सुनेहे दे नाल अमित कुमार सरोज सुमन 29 केएसडी साधुल शहर राजस्थान तो वेद प्रकाश कौशल्या रोहित अर्चना चित्रा अक्षु खिलेरी हरिपुरा अबोहर तो इन्होंने भी चॉकलेट भी सानू भेज दिती है बहुत ही मिठी बहुत ही स्वाद। अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचा दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा ग्राम पीपर लोड सरगाम छत्तीसगढ़ तो ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती तो सिद्धार्थ गोंडाने अर्चना प्रणय कुमारी प्रसिद्धि हिरामण शेंडे प्रतिभा पद्माकर गोंडाने और प्रोग्राम चगला सुनेहा तृप्ता कुमारी थांदी डॉक्टर प्रियंका थांदी डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर प्रियम बेबी भामिका ते बाणी थांदी गगनदीप थांदी सब तो पहले नंबर ते ने जी आप तुहानू दस दईए क्योंकि उन्होंने सज्जे हाथ अपना नाम लिखा है और ये पहुंचे कितों ने ये भी सुन लो पिंड ते डाकखाना टोरोवाल तहसील बलाचौर जिला नवांशहर पंजाब तो। अगला सुनेहा प्रोग्राम च गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो गांव जाखोद राजस्थान तो शंभूदयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक कुमार ते कुमारी पूजा खटक पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति ते भूमिका अरोड़ा। प्रोग्राम च अगला सुनेहा लेवाई छत्तीसगढ़ तो गुलाबदास मानकपुरी राजा दास मानकपुरी होरां दा और बिहारी कलोनी शादरा दिल्ली तो वीना मस्कीन तुलसी आशीष राजा डब्बू सम्राट चंडीगढ़ तो राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधान खुराना महसगेट नाभा तो सोमदत्त कैरव ज्योति राणी गुरमन्नत बहुत बहुत शुक्रिया महसगेट नाभा तो तुसी सानू सुनेहा भेज रहे हो और छत्तीसगढ़ दतरेंगी तो भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा पिंड बिल्लीमार जलालाबाद तो सानू मैसेज आया है प्रेम खुराना परवीन अलीशा अरमान राकेश ममता अनन्या और अनुष्का खुराना दा। और अगला सुनेहा प्रोग्राम च पिंड तमोट डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो बुट्टा बिंदर शिंदा धालीवाल वाला और प्रगट सिंह धालीवाल रवि पारसो पंजाबी। और अगला सुनेहा प्रोग्राम च कला नोर तो नरिंदर शर्मा किरण शर्मा नितिन ते मयंक शर्मा दा पिंड ढिलवां तो सुखदीप सिंह प्रगट सिंह पिंड गिदड़बाहा तो बाऊ सिंह पिंड लालबाई तो नछत्तर सिंह संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत भरत कमल सानी पिंगावाला चौंक गोराया जलंधर तो। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचा पिंड बड़िंगखेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू पूरा सिंह गहलोत राजा सिंह बड़िंग ते पिंड बजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह शुक्रिया जी तहे दिल तो शुक्रिया। अगला सुनेहा शिवाजी चौंक कटनी तो अनिल ताम्रकार अमर ताम्रकार दिलीप वर्मा राजू रजन रजक संजीव वर्मा विपिन गुप्ता अरुण कनौजिया संजय सोनी पवन यादव सुनील जैन लालू सोना मोना हनी यस सौम्या और एना दे मम्मी पापा सारयां दा ही सानू प्यार भरिया सुनेहा मिल गया है। मोहम्मद यासीन हाशमी नाजमा बेगम हाशमी मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद तैमूर मोहम्मद कलीम अंसारी नई बस्ती गंजरुंड वारा तो इन्होंने सानू सुनेहा भेजा है तुहाडे सारयां दी रली मिली पसंद है तुसी गुरदास मान दी आवाज च गीत सुनना चाहते हो ते लो फिर असी भी सुन लैने आ तुहाडे नाल।

0: निर्मल परमजीत, गुरसेवक गुरशबद, साहिबा मिर्जा, करनीखेड़ा फाजिलका पंजाब तो इन्होंने हाजिरी लवाई है। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कलोनी सनावत तो इन्होंने सानू सुनेहा भेजा है। और जॉन डेकिस्ट्रो, रोजी पल ते विलिस जनकपुरी सहारनपुर तो इन्होंने हाजिरी लवाई है। हल्का लहरा खनौरी मंडी, बिंदु बेदी, बलवीर सिंह अरनो, कामरेड हरभजन सिंह। और अगले सुनेहे दे नाल सादुल शहर राजस्थान तो राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, रजिंदर पाबला, हरमन, रीतु सैनी, गुरमन सैनी, ग्रीन पार्क कलोनी पटियाला तो इन्होंने सुनेहा भेजा है। राम सिंह तगड़, पिंदर कौर, कमलप्रीत सिंह, गुरतेज कैंथ पिंड जलूर, विसाखा नंबरदार पिंड बुरज, तगड़ फैमिली सारी साढ़े को पहुंची है। और जिहड़े राम सिंह तगड़, पिंदर कौर ते कमलप्रीत सिंह तगड़ ने यह पहुंचे ने जी पिंड बुरज मानसा नेड़े मोड़ मंडी तो। प्रोग्राम च अगला सुनेहा विनय मोहन खारवन मीनाक्षी पलोमा ते डॉक्टर ईशानी दा। तुहाडे सारयां दी रली मिली पसंद है जी सतिंदर सरताज दी आवाज च तुसी गीत सुनना चाहुंदे हो ते लो फिर तुसी भी आनंद माणो ते तुहाडे नाल असी भी माणदे हां।
1: ਨੇ ਪੁੰਨੇ ਆਪੇ ਜਲ ਸਾ ਲਗਾ

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान

0: इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दियो, यात्रा दौरान जे TC टिकट मंगे तब खा दियो, पर कोई भी OTP पिन जा पासवर्ड मंगे ता ओनू तुरंत पजा दियो।
3: RBI कहंदा है OTP जा पिन दे लई कॉल जा मैसेज आवे ता थोड़ा ध्यान नाल।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ।
6: ਯੋਜਨਾ ਉਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਬ 60 ਸਾਲ ਕੇ ਹੋਗੇ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਕਿਸੇ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੜੇ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਗੌਰਵ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿਤਾ ਸਕੋ।
5: ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 9,50,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 3 ਗਰੰਟਿਡ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
7: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ।

0: हेलो।
1: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: जी, इस ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है जी तुहाड़ा अपने प्रोग्राम बस्ते वेड़े दे विच। ते बस्ते वेड़े दा सिलसिला अगे वधाउने आ, ते अज जिस तरह दिन मंगलवार है ते खास सिलसिला हुंदा है साडा विरसा
4: जी।
3: ते गुरप्रीत, मैं ना एक दिन ते कोई गल पुछनी है। तू मैनूं इह दस भी आपां जिहदे उत्ते बह के चाह पीने आ, कई बार असीं फैसले लैण वास्ते भी इहदा इस्तेमाल करदे आ, इह बहन दे काम आउंदी है, रंग बिरंगी हुंदी है, इहदे पावे नहीं लगे हुंदे।
4: फिर तो मैं तो कुर्सी सोच रही सी।
3: नहीं, मैं तेन दसा ना पावे नहीं लगे होंगे।
4: मैं लगे कि असं चाह कुर्सी ते बह के पीने तो फीमेल भी बैठते हैं तो उन्होंने इस्तेमाल करते हैं।
3: भी अज के टाइम इस्तेमाल बहुत घट करते हैं,
4: बहुत घट करते हैं
3: जी।
4: ठीक है, ते फिर आपां इदा करदे आं कि बुझारतां दे सिलसिले नूं इत्थे ही विराम लगाउंदे आं ते अज दे विशे दे बारे सांझ पाउंदे आं। पंजाब दे घरां दी विरासत ते दरियां दी गल शुरू करदे आं।
3: बिल्कुल जी, दरियां पंजाब दे घरां दी विरासत, जिस तरह तुसीं जिक्र कीता, पंजाबी घरां दे विच वरत्या जाण वाला इक रवायती बुनिया होया फर्शी कपड़ा
4: जी। और जदों असीं दादियां नानियां, दादे दादियां दी, नाने नानियां दी, बजुर्गां दी ते हर उमर वर्ग दी गल करदे आं ते इस दे उपर बैठ के जिवें तुसीं कहा कि फैसले किते जांदे सी, गल्लां बातां कीतियां जांदियां सन।
3: भी बिल्कुल, इहदे नाल नाल होर भी जिथे असीं गल करदे आं बच्चे दे उत्ते बैठ के खेडदे सी, जिन्हां दे इहदे नाल नाल धार्मिक थावां दे उत्ते भी इहदा इस्तेमाल कीता जांदा है बखूबी दे नाल। अज भी वैसे कई जगावां ते कीता जांदा पर घट गया
4: है। जदों असीं विआह शादियां दी गल करदे आं ते उह खास तरीके नाल इहनां नूं बुणिया जांदा सी और इह हत्थ नाल बुणियां होईयां दरियां जिहड़ियां ने वख वख रंगां दे नाल वख वख किस्मां दे नाल साडे सारिआं दे सामणे उदों हुंदियां सन। और वखरे वखरे तरीके दा मटीरियल जिवें गल करते हैं सूती धागा, ऊन का धागा या फिर जूट का इस्तेमाल जड़ा है किया जाता सी। और

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, IDEX हो, ADITI हो या फिर डिफेंस।

0: रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अजैब सिंह। 7 बजे सुनोगे किसान वाणी, कमाद तो वध पैदावार। इस बारे गलबात होएगी डॉक्टर अमरीक सिंह नाल। इस तो इलावा मौसम दा हाल, गीत संगीत भी सुनाया जाएगा। ₹7:40 ते अंग्रेजी वार्ता सुनोगे जनरेशन गैप। वार्ताकार होंगे कंचन मेहता। साढ़े दिल्ली केंद्र तो 8:45 ते सुनोगे समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो तुसी सुनोगे खेड संसार। दस बजे दियां मुख खबरां तो बाद 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुनोगे सुर साधना। आज इस विच कलाकार होंगे उस्ताद राशिद खान। इन्हां दा शास्त्रीय गायन सुनोगे राग मारू बिहाग विच। रात 10:30 सरगम प्रोग्राम दा लुत्फ उठाओगे। डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जरिए दिने 3 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 ते सुनोगे सौगात। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जानगियां।

फौजी वीरो मेरे वालों यानी दीपाली वधवा वालों जय हिंद लैके हाजिर हाँ तुहाडे मनोरंजन लई कुछ हिंदी फिल्मी नगमे तुहानू सुनाण जा रही हाँ प्रोग्राम सब तो पहला आशकी फिल्म चो लिया गया गीत आवाज अनुराधा पौडवाल दी गीतकार ने समीर और संगीतकार ने नदीम श्रमण

फौजी वीरानी प्रोग्राम आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश कीता जा रहा है। फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत दिल फिल्म चो लिया तुहानू सुनान जा रहे हैं। आवाजा उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल दियां। इस गीत दे संगीतकार ने आनंद मिलिंद।

0: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले
1: नहीं यार मैं नहीं लाना
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी
1: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी
3: वही मोनू तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ बस कदे मान जा नहीं कीता
3: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे एचआईवी किवें फैलदा है
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे ता सुन एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
5: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो निघा स्वागत प्रोग्राम फौजी वीरां लई। फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत बाजीगर फिल्म चो लिया गया तुहाडी नज़र करांगी। आवाजा विनोद राठौड़ ते अलका याग्निक दियां। इस गीत दे गीतकार देव कोहली और संगीतकार ने अन्नू मलिक।

0: देकर कहा कि भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में अशिया को दोबारा इस्तेमाल करने, इनकी मरम्मत करने और तहफुजाती इकदार के गहरे कदीम सकाफती तौर तरीकों को जदीद शक्ल दी है। वो आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आलमी सर्कुलर मीशत फोरम WCEF 2026 के 10वें एडिशन के इफ्तिताही जलसे से खिताब कर रहे थे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने फोरम का इफ्तिताह किया, जिसका इनेकाद भारत में पहली बार किया जा रहा है। 65 से ज्यादा मुल्कों के 2000 से ज्यादा मुतालिका फरीकैन इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। फोरम का मौजू है सर्कुलर मीशत, अवाम और खुशहाली के लिए यकसर तब्दीली। इस आलमी तकरीब का मुश्तरका इनेकाद माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली की वजारत, आलूदगी पर काबू पाने वाले मरकजी बोर्ड, फिनलैंड का इख्तराई फंड सित्रा और गुजरात सरकार कर रहे हैं। आज इंजीनियरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 15 सितंबर को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। उनका शुमार भारत के अजीम इंजीनियरों में होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एम विश्वेश्वरैया को खिराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ख्यालात और उमंगों को ठोस उसूलियाबियों में बदलने में इंजीनियरों के रोल को उजागर किया। उन्होंने इंजीनियरों को मुल्क की तरक्की की समत काम करने वाला कर्मयोगी करार दिया।
1: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
0: पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: इंजीनियर्स भारत की यकसर तब्दीली, मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे की तश्कील और मालूमात पर मबनी इख्तरा के पीछे एक बड़ी ताकत हैं। बांधों, सड़कों और इमारतों की तामीर से लेकर डिजिटल तब्दीली लाने तक वो एक जदीद मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा करते हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग में अपने कायदाना ताउन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इख्तराई डिजाइन, दुरंदेश मनसूबा बंदी और काबिल अमल तरीके कार फराहम करके मुल्क के बुनियादी ढांचे को यकसर तब्दील किया है। उन्होंने 1932 में कृष्ण राजा सागर डैम तामीर किया, जो मैसूर के चीफ इंजीनियर्स के तौर पर एशिया का सबसे बड़ा पानी का जखीरा है। उन्होंने 1908 के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे पानी के जखीरे भी डिजाइन किए। ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज रात पर मबनी समाजी त्यौहार नौखाई के मौके पर मुल्क और खासतौर पर ओडिशा के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि नौखाई महज एक रिवायती त्यौहार नहीं है, बल्कि ये समाजी तकरीबात और दोस्तों अहबाब के साथ जमा होकर समाजी और कुनबा जाति मेल जोल की एक निशानी भी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया तनाज़ात से दो चार है, नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का कामयाब इनेकाद यकीनी तौर पर एक काबिल सताइश बात है। आलमी मामलात की भारतीय कौंसिल ICWA की सिल्वर जुबली के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने नई दिल्ली एलामिया को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किए जाने को एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ICWA 2047 तक विकसित भारत का हदफ हासिल करने में एक अहम रोल अदा करेगा। भारत का सरकारी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज अपना 67वां यौम तासीस मना रहा है। इस सरकारी ब्रॉडकास्टर ने 1959 में तजर्बाती तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के तहत टीवी नशरिया शुरू किया था। दहाइयों के अरसे में यह ब्रॉडकास्टर इत्तलात पहुंचाने, सकाफत को महफूज रखने और कौमी यकजहती का एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 15 सितंबर 1959 को क्याम के बाद दूरदर्शन ने भारत के ब्रॉडकास्टिंग दौर की शुरुआत की। उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले नशरिये का इफ्तिताह किया। 1975 तक ये ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा रहा। यकम अप्रैल 1976 के दिन एक अहम लम्हा उस वक्त आया जब दूरदर्शन को अमली अख्तियार देकर ऑल इंडिया रेडियो से इलाहदा कर दिया गया। दिल्ली में एशियाई खेलों के इनेकाद के साथ 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद दूरदर्शन देखने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम। साफ सुथरा।

0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने आज जमुना नदी को साफ सुथरा करने और ताज़ा करने के किशाव कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर नई दिल्ली में मरकजी वजीर वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस मौके पर जल शक्ति के वजीर सी आर पाटिल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, पानी के वसाइल के मरकजी सेक्रेटरी और मुतालिक रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। अमरीका के एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया के उस नए कानून पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है जिसमें गैर मुल्की तलबा और साफियों के क्याम की मुद्दत पर सख्त पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। इस फैसले से बैन अल-अक़वामी तलबा को राहत मिलने की तवक्को है। मैसाचुसेट्स के डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि इस पॉलिसी के नफाज से अमरीका की मईशत और आला तालीमी सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचने का इम्कान है। क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद इनसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत मुस्तकिल तरक्की के हिस्से के तौर पर सर्कुलर मईशत को फरोग देने का पाबंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा और सहाफियों से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के नए वीजा जब्तों पर रोक लगा दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरो खबरां तो बाद फिर हाजिर होए हैं तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। लो सुनो खुदा गवाह फिल्म चो लिया गया गीत, आवाजा मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक दियां, गीतकार ने आनंद बख्शी ते संगीतकार ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: संक्रमित सुई सरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
1: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
1: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਰੁਕੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।
5: फौजी वीरों, प्रोग्राम च अगला गीत हम आपके हैं कौन फिल्म दा। आवाजां लता मंगेशकर ते एसपी बाला सुब्रमण्यम दियां, गीतकार रविंदर रावल और संगीतकार ने राम लक्ष्मण।
6: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

फौजी वीरो प्रोग्राम दा आखरी गीत तुहाडे नजर कर रही हां होलीडे फिल्म चो लिया गया आवाज अरिजीत सिंह दी इस गीत नु लिखिया इरशाद कामिल ने और संगीतकार ने प्रीतम।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता

0: उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
1: इंडिया टुडे,
2: भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
1: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम
4: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
5: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड, सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के

0: बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टीम बनाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री जी का

0: फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधीश जी।
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाओ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मिनीवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, TRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 MHz, FM 100.9 MHz, अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं सुन सकदे हो ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने राजकुमार ते साथी। आओ सुनदे आं इन्हां दी आवाज च माता दी पेंट। मैं देखी माई जी शेर सवारी तेरी।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: रंगली धरती प्रोग्राम आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है। अज तुसी राजकुमार ते साथियां वल्लों माता दियां भेंटां सरवण कर रहे हो। आओ हुण सुनदे हां राजकुमार ते साथियां दी आवाज च माई जी वारे जा बलेहार लाल रंग लाटा तों।

मित्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद, तरुणा पोत्रा, गुनशबत। रविदास नगर मनोर तो भेजी सू चिट्ठी नानक चंद, विजय कुमार, बंटी कुमार, जोनी कुमार, कृष्ण कुमार, देवानंद ते सीमा। कोटली कला पंजाब तो भेजी सू चिट्ठी यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह ते गुरजोत सिंह। हरगोबिंद नगर नवशहर तो आई सू चिट्ठी सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा ते प्रतिष्ठा। अंबाला तो आई सू चिट्ठी रवि कुमार, रंजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरन, गुरकीरत ते गुरशबद। इन्होंने सारे पसंद से सिगला गीत लगा लगे हैं। ए एस कंगदी वाच आ सुनते हैं गीत।

तेरे हसे या चलन फूल चढ़िया, तेरे हसे या चलन फूल चढ़िया, ते एक बारी हंस के वखा, ते एक बारी हंस

नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहतार है। इस शब्द गायन की तसी डॉक्टर अलंकार सिंह होरा ने। गुरबाणी विच प्रभु नो मित्र सज्जन सखा कंत प्रीतम भगवान आदिक अनेक नावां नाल संबोधन किया जाता है। उसकी केड़ी केड़ी सिफत करिए, उसकी कथा अकथ है। सूही राग विचले छंत दे प्रथम भाग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी उस प्रभु की सिफतों सलाह करते हुए उसके गुण बयान करते ने कि ओ प्रभु सबना का साजन ते मेरा मित्र सदा मिठा ही बोलता है, डाढ़ा ही मिठा बोलता है। मैं महसूस किया है कि वह तो कदे भी कौड़े बोल नहीं बोलता। दास तो सदैव उस अमृत प्रभु सज्जन की शरण लोचदा होया उस दी शरण विच है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हौं संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा। इस छंद का गायन किया है भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौं सम्मल थकी जी ओ कदे न बोले कौरा। इस शब्द गायन कीता सी भाई अनूप सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरप्रीत सिंह।
1: यह पावन पवित्र शब्द पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का उचारण किया होया है, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 784 उत्ते राग सूही अंदर छंत रूप विच सुभायमान है। इस पावन पवित्र शब्द राही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा के महान गुणा की महिमा का गायन करदिया होया बख्शिश करते हैं कि परमात्मा मिठे बोल बोलण वाला प्यारा मित्र है। वह कदे भी कौड़े बोल नहीं बोलता अते ना ही साडे औगुणा नू चितारदा है। वह पापिया नू पवित्र करन वाला है अते किसे दी कीती नाम सिमरन दी काल कमाई नू रत्ता पर भी व्यर्थ नहीं जान दिंदा। वह प्रभु कण कण विच व्यापक है, नेड़े तो भी नेड़े है अते आत्मक जीवन प्रदान करन वाला है। आओ इस पावन शब्द की विस्थार सहित विचार करिए। इस पावन शब्द के उपर पातशाह ने मंगल दर्ज किया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भाव के परमात्मा एक है, अदुत्ती है, उत्पत्ति पालना नास उसे एक परमात्मा तो हो रहा है। वह परमात्मा दया का सागर है जिसकी प्राप्ति गुरु की कृपा दे राही हुंदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करते हैं कि परमात्मा मिठे बोल बोलण वाला प्यारा मित्र है। ऐसे मिठ बोलड़े परमात्मा नाल सांझ भी उसे मनुख की पै सकती है जिसकी जुबान विच मिठास होवे। फिक्के बोल बोलण वाले मनुख की परमात्मा नाल कदे भी सांझ नहीं पै सकती। सतगुरु तो सानू रोज़ उपदेश करते हैं, नानक फिक्कै बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगह सटिया मोह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिया पाणा लहै सजाए। भाव के फिक्के बोल बोलण वाले मनुख का तन अते मन दोवें फिक्के हो जाते हैं। रुखा बोलण वाले मनुख नू दुनिया दे रोक रुखे बचना दे नाल ही याद करते हैं। ऐसा मनुख प्रभु की दरगाह तो भी रद्दिया जाता है।

0: नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सज्जन मेरा। इस अखीरली पंक्ति विच गुरु साहिब बख्शिश करते हैं कि दास नानक सदा ही उस परमात्मा की शरण विच पिया रहिंदा है। वह परमात्मा जो मेरा सज्जन है वह मैनू आत्मक जीवन देने वाला है।
1: मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, इस रचना की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी गुरप्रीत सिंह। परमात्मा दे निकटवर्ती ही उसकी व्यापकता बारे जान सकते ने कि वह भगतां दे कितना कु नेड़े है। पंचम पातशाह रामकली राग दे छंत विच शोभा करदे ने कि परमात्मा मेरा प्रिय सज्जन है, मेरा परम मित्र है, हर वेले मेरे पास खलोता होया हुंदा है, मैनू जिंद तो प्यारा है, जान तो भी प्यारे यानी प्रभु नू मैं अपने नेत्रां नाल वेख्या है। ओ परमात्मा भावें सबना जीआं विच वसदा है पर जीव नू ओ गुरु दी कृपा तो बिना नेड़े वसदा नहीं दिसदा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। सरवण करदे आं भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयाड़ा मेरा साजनड़ा। इस शब्द का गायन किया सी भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, TRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ और DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी ते 6:05 हो रहे हैं। लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा।

शाम 6:30 ते पेश करांगे देहाती प्रोग्राम जिस काम दियां गल्लां चोना वाडी लई मशीना दी जानकारी लवांगे डॉक्टर अजैब सिंह हुणा कोल। शाम 7:00 पेश करांगे किसान वाणी प्रोग्राम।

रद्द 10:02 से पेश करांगे प्रोग्राम सुर साधना च शास्त्रीय गायन उस्ताद राशिद खान वालों गाया गया राग मारू बिहार 10:03 से।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही।
1: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसी तों वी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देने तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओ किसी तो भी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा ले सकता है ते उस नू गलत तरीके नाल उपयोग कर सकता है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो। सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
3: ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 6:20 हो रहे ने ते हुण तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी अमन देव तो प्रदेशिक खबरां सुनो। अज देश भर विच राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: पटवारी साहब का रही हो।
1: आजू प्रिंसिपल साहब आजू बच्चे वाले आजू।
0: जय हिंद कबूल करो पटवारी साहब।
1: जय हिंद जी प्रिंसिपल साहब हूँ सुनाओ तुहाडा की हाल चाल है।
0: बहुत वधिया जी चढ़दियां गलां मालक दी मेहर।
1: देखो मालक दी मेहर तो बनी रहनी चाहिए है जी। जे मालक दी मेहर होएगी ना फिर इंसान कदे भी ना तो अकदा ना थकदा ना उन्हें कोई दिक्कत आती है। पर हुंदा पता की है प्रिंसिपल साहब
0: हाँ जी
1: जो इंसान अपनियां चलाण लग जांदा है अपने हिसाब दे नाल तुरन लग जांदा है उस वेले फिर दिक्कत ही आती है।
0: बिल्कुल जी अगर तुसी सब कुछ पहला प्लान करके चलो तां औकड़ किते भी नहीं आ सकती जी।
1: देखो ना औकड़ तां तां ही आऊ जे इंसान हमेशा ही इसे तरह कोई गलत हिसाब दा। पर तुसी अज की चक्की फिरदे हो
0: ये बजट है जी घर दा बजट बजट सिर्फ देश दा नहीं हुंदा राज दा नहीं हुंदा जेकर तुसी बजट बना के अपने घर नू अपनी लाइफ नू चल दे हो तां औकड़ किते भी नहीं आंदी।
1: गल बिल्कुल सही है प्रिंसिपल साहब गल इदां हुंदी है कि जदों इंसान कोई भी प्लानिंग कर लेना कि मेरे समझो मेरी आमदन हैगी 1000 रुपया है जी मैं उहदा जिहड़ा खर्चा है अगर मैं 800, 700 या 900 के करीब करीब भी रख ला तो 100 का बचिया 150 का बचिया औखे टाइम के लिए
0: इस चीज़ नू बजट कहा जाता वे। दूसरी साइड इस चीज़ नू इदा ले लो सुनते हैं ना कि चादर देख के पैर पसारो किन्ने कु पसारने हैं ये तुहानू तुहाडी ये बेई ये बजट दसेगी
1: जिहड़ी तुसी चक्की फिरदे हो अज।
0: बिल्कुल कि कमाई का किन्ना हिस्सा किते लगाना वे बचत किन्नी करनी है मेडिकल लई की रखना वे ये सारा बजट बना के चलोगे तो आने वाली जिंदगी दे विच औकड़ आवे मुकाबला तुसी करन लई पहले ही तैयार हो।
1: बिल्कुल देखो ना प्रिंसिपल साहब ये जड़े पढ़े लिखे लोग होंदे है ना इन्हां दा यही फायदा होंदा है क्योंकि उन्होंने सारे काम जड़े है ना वो पहले प्लैनिंग की होंदी है कि आने वाला भविख जड़ा है ना उन्हां दा सुरक्षित रहे है जी। हुंदा की है कि मनुख नूं अपनी आमदन हैसीयत ते सीमावां विच रह के ही जीना चाहिए क्योंकि जे जिदा तुम गल की है ना कि चादर देख के पैर पसारने चाहिए है ये जरा चादर है ना जो थोड़े पैर बाहर निकल जाण उस वेले फिर इंसान तकलीफा परेशानियां चा जाता है।
0: अजकल नवी पनीरी दुखी क्यों है जी चादर नहीं देखते दे, अपने जिंदगी नू अपने बजट नू कह लो खर्चिया नू कह लो करजिया दे नाल निपटाई जा रहे हैं
1: कहिंदे जी करजा चक लिया साड़ी जिंदगी सुखौली हो गई।
0: सुखौली कह दी जी EMI जिहड़ी लगती है रात नू नींद नहीं आउण दिंदी बच्चिआं नू।
1: देखो ये जिहड़ी तुसी गल कीती है ना ये गल बिल्कुल सही है कि इंसान नू हमेशा ही इस चीज़ वल गौर करनी चाहीदी है कि जिहड़ा साडा आमदन का जो साडा सोर्स हैगा उहदे मुताबिक ही अगर असी अपने आप नू खर्चा करिए तां कदी भी कोई मुश्किलात नहीं आ सकती। पर अज एक होर बड़ा खास दिन है प्रिंसिपल साहब
0: ਕਿਹੜਾ ਜੀ
1: ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ
0: ਕਿਆ ਬਾਤ
1: ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 5:30 ਕਿ 4:30 ਟੋਨ ਟੋਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਊਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਟਿਊਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
0: ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
1: ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਸੀਲੇ ਹਿੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
0: ਪਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ
1: ਅਲੱਗ ਹੀ
0: ਸੀਗਾ।
1: ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ।

पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल साडा पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल साडा पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
2: अते 60 साल की उम्र वालों नूं 3000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते ने 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर दा योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना दे लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज कराण।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता दी मेहनत नूं समर्पित। पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान। कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।

0: जिला फाजिलका पंजाब से श्रवण कुमार बोल रहे हैं जी।
1: जी जी
0: सर जी, ये 190 ये किस्म है। हेलो जी।
2: हाँ जी, हाँ जी जी, 190 किस्म की गल कर रहे
0: ने। ये हमारे जो सरकारी खंड मिल है फाजिलका,
1: जी जी,
0: ये खरीद कर सकते।
1: देखो वो तुम 190 किस्म की मेरे हिसाब से पंजाब जी पंजाब रिकमेंडेशन जी नहीं हैगी, बट मैं पता नहीं हूँ 190 की किस्म कितों ली है, बट फिर भी तुम अपनी जोड़े मिल के संबंधित जोड़े उन्होंने गल करके तो उन्होंने अपनी पहचान करवा सकते कि उ है तो फिर वो देख सकते हो।
2: कुछ होर पूछना चाहते हो?
0: हाँ जी, वैसे यही पूछना था जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने लई।
0: धन्यवाद
2: जी। साढ़े किसान वीर सानू फोन कर सकते ने, साढ़ा नंबर है 2813074, एरिया कोड है जलंधर का 0181 यानी 0181 2813074। सो डॉक्टर मीर जी, असी गल कर रहे सी कि जमीन की जिहड़ी कमाद वास्ते वधिया केड़ी हुंदी है।
1: जमीन की आपां जे गल करिए तां हरेक तरह की जमीन दे विच गन्ने की फसल हो जाती है, खासकर जी ताड़ी दरमियानी सैंडी सॉयल एंड लोन सॉयल है, ये बहुत वधिया, खासकर दरियावां दे कंडे दे उत्ते जी है क्योंकि उत्थे नमी काफ़ी मिल जाती है उन्हों, तो उत्थे यील्ड भी चंगी मिल जाती है, फसल भी चंगी हो जाती है। उत्थे यही थोड़ी प्रॉब्लम रही है कि जंगली सू जंगली जानवरों की जी प्रॉब्लम काफ़ी रही है। सो उत्थे एक फायदा एक इस फसल का यह हो जाता कि जिदा पहले भी गल की है कि उत्थे भावें उत्ते हड़ आ जाए मीह पानी आ जाए जिदा मंडी आ जाए पर फसल जी वधिया हो जाती है। सो दरियावां दे उत्ते क्योंकि उत्थे फसल ना झोना हो सकता ना कणक हो सकती है, सो वो जी वधिया जी आप मिल सकते हैं। बाकी किसी भी किस्म की भी हो सकती है,
2: किसी भी किस्म की हो सकती है। ये वास्ते दोबारा इसनों वाहनी पैंदी है फिर करना पैंदा?
1: नहीं, तो तैयारी करनी पवेगी वो मेरी बेनती। अच्छा। सारे किसान वीरों बेनती क्योंकि जी आप आसू की बिजाई जी चलती पई है, ये मैं किसान वीरों में एक बेनती करूँगा कि किसान वीर क्योंकि यदि जी जड़ जी बड़ी डूंगी जाती है, जिनी जड़ डूंगी जाएगी उन्ना जरा वा वे जी जो स्टैंड जरा वधिया होएगा वो डिगेगी घट। सो क्योंकि आम करके देखा गया कि पिछले लंबे समय तो आप वाह रहे हैं जमीन वाह रहे हैं वो सख्त तय जी बन गई है जमीन के हेठा जी
2: फोर।
1: सो उस तय में जोड़ तोड़न वास्ते जोड़ा सा सब सॉयलर आ सब सॉयलर जरा वा जो चिजलर आ डूंगी हल आ तैर तोड़ हल आ जरूर चला लन क्योंकि हर 3 साल बाद चला लन जो वो जी जमीन जी मिट्टी जी पोली हो सके जड़ा जड़िया ने बिल्कुल थले जा सकन तो वह बहुत जरूरी है कि वह आप चलाइए। उस तो अलावा दूजी गल जी जरूरी है कि आप बीज की सिलैक्शन बीज की जी चोन जी करनी हूँ बिजाई करनी आ वह किसी भी भरोसेमंद सोर्स तो लैन बीमारी वाला कोई भी जे मान लो उ बीमारी है कोई किसी का कीड़ा मकौड़ा वा वो बीज ना लैन किसी भरोसेमंद तो लैन। इस अलावा वह बीज की जी सोह जी है क्योंकि गन्ने की फसल के 4-5 अजिहियां बीमारियां ने जिन्हों का बाद कोई इलाज नहीं हुंदा जो फसल उग पैंदी है जां पक्कन तक, तो उहदा इक्को इलाज है कि आप बीज की सोध करिए। तो बीज की सोध वास्ते किसान भी कुछ भी अणगहली ना करन क्योंकि असीं अज फिर गल आ जांदी है आप लेबर ते डिपेंडेंट होए ने लेबर नूं कहिंदे आपां बीज तैयार करना उह कहिंदा नहीं बीज नहीं तैयार करना आपां स्याड़ बनाए उहदे विच गन्ना पाया तो टक टक करके उन्होंने गनासा फेर के उन्होंने पैदा फेर दिंदे आ पर नहीं आपां गन्ना गन्ने का बीज तैयार करिए गन्ने विच ते बीज दे विच अंतर समझिए वी बीज की कीमतता वा क्योंकि बीज चंगा होगा तो फसल चंगी होगी जे बीज माड़ा वा तो फिर तुहाडी फसल जिहड़ी आ जिन्नी मर्जी तुसीं जिन्नी मर्जी तुसीं वधिया खाद पा लो दवाइयां पा लो पर जे तुहाडा बीज नहीं चंगा फिर वो कोई किसे काम दी नहीं है। सो इस करके उहदे विच जरूरी है कि असीं जदों वो बीज तैयार कर लिया जां 2 अखां वाला जां 1 अखां वाला तो उहदे विच उहनूं जिहड़ा वा एक 100 लीटर पानी में 100 ml एमी स्टार टॉप जिहड़ी आ उहदे च उहदा कोल बना के जिन्ना गन्ना है गन्ने का बीज तैयार गन्ना बीज तैयार किया वा उन्होंने पल्ली में पा के तो डुबो के उन्होंने कढ़ लो।
2: समय समय से थोड़ी टीम इस तरह जाती भी है?
1: बिल्कुल बिल्कुल ये जी बिल्कुल जे अपने गन्ना विकास अधिकारी ने वह पिंड में जाके जी खंड मिलों के स्टाफ है उन्होंने नाल दोवान रल के फिर जी सा खेतरी खोज केंद्र कपूरथला ने उन्होंने वैज्ञानिक जी तिने जड़े ने जाके उन्होंने प्रॉपर जी गाइडेंस करते हैं सोशल मीडिया राही आप गाइड करते हैं अखबारों राही गाइड करते हैं भी ये आप कि जी सोध करनी आड़ी कि किस्म बीजनी आ
2: जी। तो एक फोन कॉल आई है। हैलो
0: सत श्री अकाल जी ज्ञान सिंह किंडा पिंड लोहगढ़ जिला फिरोजपुर।
1: जी जी सर।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 854 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 MHz, FM बैंड 100.9 MHz और DTSD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 8 बज रहे हैं ते हुण वेला हो गया है प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर

दोस्तों जिंदगी हसीना प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोग्राम दे विच आज एक छोटा जिहा वादा अपने नाल वादा करते हैं कि मैं हर गल नूं दिल ते नहीं लाऊंगा। सब तो पहला वादा तुसी अपने आप नाल करना है, क्योंकि मैं ये वादा अपने आप नाल कर रहा थोड़े सारिया दे नाल, सारे स्रोतिया दे नाल। तुहाडा दोस्त अपने आप नाल वादा कर रहा और तुसी भी आपको अपनी जगह जिथे जिथे भी मेरी आवाज़ जा रही है थोड़े तक मैं पहुँच रहा वहाँ, तुसी अपने आप नाल वादा करना है कि मैं कोई भी गल दिल ते नहीं लावांगा, मैं हर किसी नूं खुश करन दी कोशिश नहीं करांगा, मैं अपने सुपनियां नूं छड्डांगा नहीं, मैं अपने परिवार लई समां कढ़ांगा, मैं अपने शरीर दा ध्यान रखांगा और सब तो वड्डा वादा मैं अपने मन नूं भी आराम देवांगा। मैं जिंदगी नूं सिर्फ कट्टांगा नहीं, मैं इसनूं जीवांगा। चलो एक बार फिर तो असीं वादियां वल नूं जाइए। सब तो पहला वादा जिहड़ा तुसीं अपने आप नाल करना है वो की है कि मैं हर गल नूं दिल ते नहीं लवांगा। दूसरा वादा है मैं हर किसी नूं खुश करन दी कोशिश नहीं करांगा। अगला वादा है मैं अपने सुपनियां नूं नहीं छड्डांगा। ते अगला वादा है मैं अपने परिवार लई समां कढ़ांगा, मैं अपने शरीर का ध्यान रखांगा, मैं अपने मन नूं भी आराम देवांगा। तो सब तो जरूरी ते अखीरला जिहड़ा वादा करना अपने नाल वो है कि मैं जिंदगी नूं सिर्फ कटना नहीं है, मैं इसनूं जीवांगा। जी हाँ, यही सारियां चीज़ां ने जो जिंदगी नूं होर हसीन बना दिंदियां ने। लो जी, हुण वेला हो गया जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे अखीरले गीत दा, क्योंकि समां इजाजत नहीं दिंदा। लो जी, आनंद माणो जी इस गीत दा।

0: लो दोस्तों हुण वेला आ गया प्रोग्राम जिंदगी हसीन है तो इजाजत लैण दा, फिर मिलदे हां इसे जोश दे नाल, इसे होश दे नाल, इसे सोच दे नाल। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 8:45 हो रहे हैं। हुण तुसी सुनोगे समाचार संध्या साडे दिल्ली केंद्र तो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया।

0: भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं, और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं, और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन

0: दिन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26 अरब 86 करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सके और किसानों को लाभ पहुंचा सके। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
1: We need to develop sports infrastructure.
2: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और NEET प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर

0: विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पैसे पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed.

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, टीआरएम 854 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगा हर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगा हर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर और डीटीएस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 9:30 हो रहे हैं। लो हुण पेश है प्रोग्राम खेड संसार।
1: खेड संसार खेड संसार प्रोग्राम सुनन वालियां नूं वीरेंद्र दा नमस्कार। खेड दे मैदान जिथे खिडारियां दी शरीरिक आजमाइश करदे ने, उन्हां दी मानसिक मजबूती नूं परखदे ने, उथे दर्शकां नूं रोमांच नाल भर दिंदे ने। खेड दे मैदान सिर्फ खिडारियां नूं प्राप्ति ते दर्शकां नूं रोमांच ही नहीं दिंदे, बल्कि सारे खेडन वालियां ते वेखण वालियां नूं जिंदगी दा सबक भी दिंदे ने। हर खेड, हर मैदान, हर किसे नूं इह सुनेहा दिंदा है कि सच्चे मन नाल कोशिश करदे रहिए, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ते खेडां दा इह महान सबक आउण वाले दिनां च सानूं मिलेगा जापान च होण वालियां एशियन खेडां तों। खेडां दा महाकुंभ उत्थे होण जा रिहा है। अज दे खेड संसार प्रोग्राम च वी गल्लबात इही होएगी कि कुश्ती ते अथलैटिक्स विच भारत दीआं तैयारियां किदां दीआं रहीआं ने। खेड संसार प्रोग्राम च आओ सब तों पहलां गल करिए राष्ट्रीय पद्धर दे कोच सरबजीत सिंह होरां नाल, जिहड़े सानूं दस रहे ने कि 70 तों ज़्यादा अथलीट्स दा दल जिहड़ा भारत दी प्रतिनिधता कर रिहा है, उहदे तों संभावनावां किदां ने। आकाशवाणी जलंधर दे खेड संसार प्रोग्राम च इस वेले सरबजीत सिंह साडे नाल ने, जिहड़े कि भारतीय अथलैटिक्स विच बहुत वड्डा नाम ने। गुरिंदर वीर सिंह नूं इन्हां ने ट्रेन कीता ते होर बहुत ही राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे अथलीट्स इन्हां ने पैदा कीते ने। एशियन खेडां विच भारतीय अथलैटिक्स दीआं संभावनावां किदां दीआं ने, इस बारे इन्हां दे नाल गल्लबात करदे हां। सरबजीत सिंह जी, साडे प्रोग्राम च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी।
2: हां जी, सत श्री अकाल जी सारयां नूं।
1: ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣਨੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ?
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਆਫ 8 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, टीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगा हर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगा हर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 10 बज रहे हैं। हुण तुसी सुनोगे मुख खबरां।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नवी दिल्ली विच 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विचकार हुई मीटिंग विच कई मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा मंत्री ते रक्षा खेत्र विच आत्मनिर्भरता सिर्फ रक्षा बलों खोज ते विकास संस्थावां अते उद्योगां विचकार निर्विघन सहयोग राही ही हासिल की जा सकती है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अते दिल्ली दे मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी दे निर्विघन व्याह नूं यकीनी बनाने लई किसाऊ बहु मंत्री प्रोजेक्ट समझौते ते दस्तखत किए ने। देश विच 15 साल अते इस तों वध उमर दे लोकां दी समूची कार्यकारी हिस्सेदारी दर अगस्त विच वध के 52.8% हो गई है। पंजाब सरकार ने सेहत अते परिवार भलाई विभाग नूं राष्ट्रीय सेहत मिशन दे कर्मचारियों नूं दरपेश मसलियां दे हल लई इक सांझी कमेटी दे गठन दे निर्देश दिते ने। सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला सफल किडनी ट्रांसप्लांट करन वाला पंजाब दा पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। पंजाब पुलिस दी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कनेडा तो वापस भेजे जाण तो बाद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई दे एक करीबी साथी नूं हिरासत विच लिया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करी दे एक वड्डे नेटवर्क्स दा पर्दाफाश करदिआं 8 मुलजमां नूं वड्डी मात्रा विच हीरोइन अफीम अते एक 30 बोर दे पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया। भारतीय रेलवे ने आगामी त्यौहार के मद्देनज़र पंजाब के मुसाफरों की सहूलत लई 2 विशेष रेलगड्डियां शुरू कीतियां ने अते भारत अते अफगानिस्तान विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम विच खेडिया जा रहा है। हुणे तुसीं सुन रहे सी अज दीआं मुख खबरां। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ 'ਤੇ 10:02 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਿਹਾਰ।

उन्हें तुम सुन रहे सी प्रोग्राम सुरसजना च शास्त्रीय गायन जिसके कलाकार सन उस्ताद राशिद खान राग मारू बेहाक यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। लाउन पेश है प्रोग्राम सरगम।

प्रोग्राम स्वगर्म सरगम के आप सबका स्वागत है। इस वेले वेला हो गया रात का, वो वेला जो साढ़े को बहुत अपने इस वेले उन्होंने लोगों अपने नाल बैठे सारे दिन की दौड़ भज तो दूर मेरी आवाज थोड़े तक पहुंच रही है और ये हल्का हल्का मैं म्यूजिक जड़ा थोड़े तक पहुंच रहा सुकून भरी आवाज सुकून भरे संगीत। दोस्तों सरगम सिर्फ सुरां का नाम है, सरगम तो वो एहसास है जो दिल में छू जाता है, कदे किसी पुरानी याद में जगा।

वाह जी वाह, कितना सोहना गीत। दोस्तों कई गीत अजिहे होंगे ने जो सिर्फ कन्ना तक नहीं सिद्ध दिल तक पहुंच जाते हैं, तो संगीत की खूबसूरती भी है। ऐसे गीत सुनते हैं पर असल विच उन्हें लिखे विच अपनी कोई ना कोई कहानी लभ लैंदे आ। कदे कोई गीत सानू स्कूल कॉलेज दे दिनां तक लै जांदा ते कदे दोस्तां दी यादां विच ते कदे किसे खास इंसान दी याद दवा दिंदा। चलो जी हुण वारी है अगले गीत दी, एक नवे गीत दी जिहड़ा थानू जरूर किसे ना किसे दी याद होए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉलफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च

0: हाँ जी स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: थैंक यू।
0: ते अपने बारे दस दो जनाब, कौन ते कित्थों जी?
1: मैं जी सुदीप कुमार उर्फ तोती, तहसील जिला गुरदासपुर ब्लॉक।
0: गीत केड़ा जनाब?
1: मेले नूं चल मेरे नाल कुड़े आशा सिंह मस्ताना जी।
0: जरूर सुनावांगे जी, फोन करने लई शुक्रिया जी। कुछ सुनेहे जी, कनेरा मोहल्ला पटियाला तो बत्ता परिवार, जिस विच जी मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: जी। मैं मनजीत सोनी जी, फायर
0: होर सुनाओ जी, की हाल चाल है? फाजिलका दे
1: वधिया जी, तुसीं सुनाओ।
0: ते गीत दी फरमाइश दस दियो जी।
1: गीत सर ला दो निमरत खेरा दा, करो जी।
0: जरूर सुनावांगे जी, फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: ओके सर, थैंक यू।
0: कुछ सुनेहे भी शामिल कर दें जी। शिवाजी चौक कटनी तों अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी ते सोम्या जी। अगला सुनेहा जी, रजिंद्र पाबला, हरमन पाबला, रितु सैनी, गुरमन सैनी, ग्रीन पार्क कलोनी पटियाला तो, ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही ते मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार तो। अगला सुनेहा जी, मजनू का टीला तो, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गुड़िया माही मलिक ते ईशिता अरोड़ा, पिंड नथाना, जिला बठिंडा तो, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, सरहंदी बाजार पटियाला तो, प्रेम कुमार रहेजा, कांता राणी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, जोत, सजनी, आदर्श नगर मलोट तो, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सोवन सौरभ शर्मा, साइना शर्मा ते निवान शर्मा। इन्हां सारिआं दोस्तां दी मिली जुली फरमाइश निमरत खैरा दी आवाज़ च फिरोजी।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: सत श्री अकाल रमी साहब।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: प्रीतम पिंड लद्दूवाला जिला फरोजपुर।
0: लसन वाले जी।
1: हाँ लसन वाले, बिल्कुल जी सही पहचानिया।
0: सुनने वाले दोस्तों नू आवाज तो ज्यादा लसन पता लग जाए कि भी प्रीतम सिंह जी लसन स्पेशलिस्ट है जी।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत ही वैसे तो जानते ही ने सारे लोग, पर तुसी सानू पूरा मशहूर कर दिता।
0: ते
1: सही
0: केहो जिहा बीतिया जी
1: बात।
0: अज दा दिन जी?
1: बस बहुत वधिया वधिया दिन चलता। हुण तां रुत बड़ी ठंडी मिठी जी चलदी पई, गर्मी हट गई, अग्गे नालों बड़ा फर्क पै
0: बसंती
1: गया।
0: मौसम हो गया, पखा भी चलेगा ते ठंडक महसूस हुंदी है, साड़
1: बिल्कुल,
0: नहीं
1: रात
0: पैंदी।
1: पिछली को रात 1:30 बजे पखे बंद करने पैंदे ने।
0: क्या बात है, इन्दा मतलब जिथे तुसी घर बनाया वे इलाका खुला डुला है,
1: हाँ बिल्कुल, अपना घर बाहर है, पिंड तो पासे कल्ला घर है।
0: क्योंकि तदी रात नू ठंड लगती है, नहीं तो शहरां दे विच होवे या पिंड दे विच होवे ते हवा
1: हाँ
0: तां पहुंचेगी नहीं अंदर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही गल है तुहाडी, तुसीं तो पछाण लिया भी घर मेरा वाकई बाहर है, जिवें तुसीं गल करी है। हाँ
0: ते
1: जी,
0: फरमाइश दस दिओ जी, गीत केड़ा सुनाइए जी,
1: लाल चंदियां वाला जट दा,
0: केड़ा जी?
1: जिन्ना कीती ना कमाई उन्हें रज के की खाना।
0: बिल्कुल जी, दब के वाह ते रज के खा।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल सही गल है, पुराने गल्लां सुनाउंदे।
0: सही है जी।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: मैं सिकंदर सिंह पिंड मौजूद।
0: ते गीत दी फरमाइश भी दस दो जी।
1: गीत रंग
0: नहीं लबने बीबा हुस्न जवानी ते मापे, जरूर सुनावांगे जी। फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद।
0: कुछ स्नेह भी शामिल करते हैं जी। फ्रांसी जिला हिसार तो राजकुमार डुड्डी, प्रमेद कुमार, प्रमोद कुमार डुड्डी ते पुष्पिंदर कुमार डुड्डी महस गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव ज्योति राणी ते गुरमन्नत, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला तो रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल ते गुरशबद सिंह राहुल। इन्हां दोस्तां दी मिली जुली फरमाइश हरभजन मान की आवाज, तीन रंग नहीं लभने बीबा।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी? मंगू बस्ती तो। मंगू बस्ती कित्थे करके पैंदी जी? दूरदर्शन दी बैक साइड। दूरदर्शन दी बैक साइड अवतार नगर, टैगोर नगर, अवतार नगर पैंदा यानी कि। मतलब अवतार नगर 13 नंबर गली नूं ही मंगू बस्ती कहा जांदा है।
1: हां जी हां जी, बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: ठीक है, यानी पहले मंगू बस्ती सी, हुन अवतार नगर दी गली नंबर 13 बन। हां जी,
1: पहले बाद च पे है, पहले मंगू नूं बस्ती होंदी
0: सी। ठीक है जी, ते ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
1: ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।

आकाशवाणी दे वक-वक भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी विच। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते ही तुसी पंजाब दे वक-वक आकाशवाणी केंद्रां दे नाल AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम भी सुन सकदे हो। हुणे ही डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर ते आईट्यून दोवें प्लेटफॉर्म ते

नाम ही बोहित है जो पवसागर विच फसे हुए जीव नूं पारले बन्ने लौंदी है। राग गुजरी विच उचारे हुए शब्द विच पंचम पातशाह स्पष्ट करदे ने कि सत संगत तो बिना यह पवजल तरिया नहीं जा सकता। मेरे माधव जी, सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। श्रवण करदे हां भाई बलविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया। इस शब्द का गायन किया भाई बलविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। गुरमत विच मानस जन्म का प्रयोजन भाव मकसद निर्धारित किया होया है, वह है अपना मूल पछानना, भाव उस प्रभु की जोत विच अभेद होना, उस प्रभु का दीदार करना। इस वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सानू सुचजी जीवन जुगत भी दर्शाती है। विशेष तौर पर संतां दा संग उत्तम संगत दस्या गया है। ये प्रभु नाल मिलाप करवाउण दा नेक कारज संत भाव गुरु दे हिस्से ही आउंदा है। एक वचन रूप विच जिथे संत पद आया है

0: उत्थे संत तो पाव गुरु है। कबीर सेवा को द्वे पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। पंचम पातशाह गौड़ी सुखमणी रचना दी 23वीं अष्टपदी दे पहले पदे विच फरमाउंदे ने, संत संग अंतर प्रबडीठा। सुनदिया जोगिंदर सिंह कंग होरां पासों ये वार्ता।
1: ये पावन तुक शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज, बाणी दे बोझ अते राग दे तनी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी दे मुखार बिंद तों उन्हां दी शाहकार रचना सुखमणी साहब दी 23वीं अष्टपदी दे आरंभ विच उचारण कीती होई है, जो राग गौड़ी विच धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंक 293 ते सुशोभित है। पावन गुरबाणी विच संत संग अथवा संतां दी संगत दा भरपूर वर्णन उपलब्ध हुंदा है। संत संग सदा ही गुणकारी अते पर उपकारी है, जिस द्वारा मनुखी मन प्रभु दे रंग विच रंगिया जांदा है अते भटकदे मन नूं संतोख ते सहज मिलदा है। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी राग राम कड़ी विच अंकित करदे हन, पेटत संग पार ब्रह्म चित आया, संगत करत संतोख मन पाया। संत संग विच मन आनंद विभोर हो जाता है अते विसमाधी रंगण विच रंगिया जाता है। पंचम दातार राग सोठ विच बख्शिश करते हैं, महा आनंद पए सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर सो मन मानिया, रंग रते बिसमाधी। संत संग हरी नाम दी औख दे के सब रोग कट देंदा है अते चंचल मन निर्मल हो जाता है, फिर यही निर्मल मन प्रभु प्राप्ति का राज सेरा बन जाता है। पंजवें पातशाह जी का राग बिलावल विच फरमान है, महिमा साधु संग की सुर हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पए चीता। संत संग करदिया मन ना डोलदा है ना ही तृष्णा विच जोड़दा है, सब बंधन छुट जाते हैं, मोह परमिट जाते हैं, फिर पार ब्रह्म नाल ही नेड़ता बन जाती है। राग भैरों विच पंजवें सतगुरु जी अभिव्यक्त करते हैं, संत मंडल में हर मन वसै, संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में है निर्मल रीत, संत संग होए एक प्रीत, संत मंडल तहा का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। संत संग अजे ही अध्यात्मक पाठशाला है, जिथे विचर नाल जिग्यासु की आत्मक अवस्था उच्ची हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश होता है अते नाम तां दी बहुमुली पूंजी प्राप्त होती है, जिस नाल लोक ते परलोक दोवे सोहेले हो जाते हैं। वो संत जन भी धनता दे योग हन, जो मनुख नूं संत संग नाल जोड़ के उसका उधार करते हैं। अजे ही पर उपकारी संत जन वड्डियां भागां नाल ही मिलते हैं। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी राग कानड़ा विच फुरमाउंदे हन, मेरा मन साध जना मिल हरे आ, हो बल बल बल बल साध जना को मिल संगत पार उतरिया। अजिहे तत्वेता संत जन जिथे परमेश्वर का नाम जप के प्रभु नाल अभेद हो जाते हैं, उत्थे मनुखता से डाढ़े पार उपकार करते हुए अणगिनत जिग्यासुआ नूं भी प्रभु के नाम नाल जोड़ के भव सागर तो पार कर देंदे हन। अजिहे संत जना दे बचन भी अटल हुंदे हन। श्री गुरु अर्जन देव जी का राग सारंग विच फरमान है, गिर बसदा जल पवन जाएगो, एक साध बचन अटलादा। गुरबाणी विच संत जना दी शोभा भी भरपूर रूपमान होई है। ये वो तत्वेता संत जन हन जो उच्च आत्मक मंडलों विच विचरदे होए प्रभु का रूप ही हो जाते हैं। कण कण ते जरे जरे विच व्यापक प्रभु घट घट व्यापक भी है। वह सर्वशक्तिमान ते समर्थ प्रभु संत जना की कृपा ते नाम की रंगन द्वारा ही प्राप्त हुंदा है। संत संग नाल कुमत का त्याग अते सुमत की प्राप्ति हुंदी है। जदों किसी पूर्ण संत जन का संग मिलता है तो जीवन ही बदल जाता है। गुरबाणी विच वर्णन है कि गणका का अनैतिक जीवन एक पूर्ण संत दे संग नाल बदल गया और रूहानियत दे रंग विच रंगी गई। संत संग की यह महिमा है कि इस द्वारा जीव का अभिमान मिटदा है,

करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। इस पावन रचना का गायन किया भाई जगतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

अंडज जेर जगत पूजा खानी से तजा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिनो पाया जग तिस जोहा।

रंच करेत खेत निर्मत दुर्लभ देह सोबार तरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अर बंदप बोचन के सब सूझ परे भरत मान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे कुनहीन दीन माया किरम सिमर स्वामी एक करे कर कह लियो कृपाल कृपा नित नानक काट परम परे रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महामगना संपदोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तासो मोह बड़ो सो कना बोयो बीज अहंग मम अंकर बीतद आद करत अगना मृत मंजार बसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।

कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कृतर साजन साख, उल्टत जात बिरंकी शार, दीन दयाल पुरख प्रापूरन, छिन छिन सिमरो अगम अपार, श्री पतनाथ शरण नानक जन।

ब्रह्मा जी शिव संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोज ते गोरख।

बिष्टा अस्त कृम उदर भरयो है दह दिस ताए महाबिखिया को पर धन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रो।

प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रस।

0: सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जातो प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंध्यो ना जात विदे मन।

साम कै सितंबर स्वामी सच मया छह साच रहे सब को सा समावे रिक कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्राचित जाए नानक तो मुखंत्र पाए जुज मैं जो